0: 1484।
1: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, टेलीनो हमें सही राह दिखाते।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: विद्या विकास मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल, वो तंग रही। रोबोटिक्स एक्टिविटी,